0: सुनिए, इन्हें जानते हैं आप? फादर पीटर दयाल।
1: वो रहे सामने।
2: माय नेम इज पीटर दयाल। आई डिक्लेयर दैट मिस

0: आई जस्ट डोंट गेट यू आरव. जो तुमने आज किया है उसकी वजह से हरी आजाद होगा और वसुधा तुमसे अलग होगी. फिर भी तुम इतने खुश हो?
1: सच्चे प्यार की कहानी का कोई अंत नहीं होता पूर्वा.
2: It's a beautiful morning. Hey, it's Thursday. Good morning. It's the May 21. Of course, we're listening to the voice of Imran Hashmi and Vidya Balan. And this beautiful one is from Arjit Singh. What a great way to start this Throwback Thursday.
0: I don't get you, man.
1: Apurva. गाड़ी रोक.
0: क्या हुआ?
1: स्टॉप द कार प्लीज.
0: व्हाट हैपेंड?
2: आई ट्रस्ट यू आर डूइंग वेल दिस मॉर्निंग एंड यू हैड अ ग्रेट एंड रेस्टफुल इवनिंग एंड यू आर सुपर एक्साइटेड फॉर दिस ग्रेट डे अहेड. द वेदर इज नॉट दैट बैड ऑन द आउटसाइड हियर इन डाउनटाउन जॉर्जटाउन. आई ट्रस्ट दैट इट्स अ लिटिल बिट बेटर इन योर एरिया. If you are a little down this morning, just walk outside. If it's raining, that can help you. And if you're seeing the sun trying to peek out, that's you. You have the power. We believe in you. And you can surely get over whatever you're going through. Hey, good morning. I'll be here until 9 hours, taking care of you with some great Bollywood beats. Hey, right here on Vibes 100.1 FM, your favorite dial.

0: दीजिए।
1: एक बार देख लीजिए, दीवाना बना दीजिए। चलने को है तैयार हम, परवाना बना दीजिए। कैसे लगा आपको? हटिए, आप जाइए।
2: Essie Quibble is Guyana's.
3: A time check for you is 6 hours 10.

0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: कहिए क्या सुनेंगे आप?
1: अरे पहले ये कहिए कहाँ थी आप?
0: मैं कर रही थी किसी का इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार
1: हाँ।
0: और जिससे करती हूँ मिन्नतें।